इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: हाय, मैं हूँ आरजे ज्यूस।
3: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
4: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
5: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM, हर दिल की।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you. Mixing in

कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश

0: लहरों तक
1: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
0: रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: चुनार बीट्स विद हर्षित दीपा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: कौन आया?
1: दोस्तों रेडियो चनौर की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप। मैं हूं जॉक्स्यूस और शो का हिस्सा बनने के लिए अपना किस्सा हम तक पहुंचाने के लिए 8899-04904 इज द नंबर 8899-04904 आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। और दिल की धड़कन को और जोरों से धड़काने के लिए फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चनौर के ऑफिशियल हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर। साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से। डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन सुनेगा धड़काते रहो।

0: Jesus. Bonaya.
1: Or is Regency of North Kashmir up enjoy kar rahe hain Mastar Show. What's up? मैं हूं ज़ूस और दोपहर के 2 बजते हैं आई एम हियर इन द स्टूडियो आपसे बतियाने के लिए आपकी सुनने के लिए आपकी सुनाने के लिए और आपकी कही सब तक पहुंचाने के लिए तो मेरी जान खाइए उल्फत का पान और बताइए हमें क्या है आपके दिल में विचार जिनका आचार परोसना चाहते हैं पूरी दुनिया को हम तक पहुंचाइए हम पहुंचाएंगे वहां जहां जहां जाती है रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी अबाउट इस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यह दिलों में बसती है और कानों से गुजर जो है सीधा दिलों पर असर रखती है और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 एफएम मजेदार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आइए आपको सुनाते हैं आज का वेदर अपडेट जी हाँ ब्रदर क्या कहता है आज का वेदर
2: रेडियो चिनार रेडियो रेडियो चिनार वेदर अपडेट वेदर अपडेट
1: आज का मौसम कैसा होने वाला है बता रहे हैं आपका जी हां आज का मौसम है बिल्कुल क्लियर
2: वेदर अपडेट
1: इस सनी डे फॉर टुडे आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है 28 डिग्री सेल्सियस मतलब कुदरत जो है कड़ी जो आजमाइश होती है इंसानों की दे रही है कल 20-22 था आज सीधा 28 मतलब ये जो टेम्परेचर में शिफ्ट्स हो रहे हैं कभी बादल कभी बारिश है टेम्परेचर अप डाउन खासा असर पड़ सकता है कि इंसान की बॉडी पर उसके डेली रूटीन पर तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिए कि अगर धूप ज़्यादा है तो बाहर ज़्यादा घूमे फिरे ना और अपने आप को हाइड्रेटेड ज़रूर रखें पूरा दिन सूरज चमकेगा और सूरज के साथ साथ बता दो आपको देयर इज नो चांस कि बादल सूरज को ढकने की कोशिश करें हाँ शाम होते होते हल्के फुल्के बादल सोचा आजकल रिवाज ही बने बट ओवरऑल इट्स अ सनी डे अभी के लिए मॉडरेट पर है यूवी इंडेक्स ह्यूमिडिटी 68% 5 किलोमीटर पर आवर है विंड स्पीड विजिबिलिटी 16 किलोमीटर आज का सनराइज हुआ 5:37 पर आज का सनसेट होगा 7:21 पर
2: वेदर अपडेट
1: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन मैं हूं जॉक्स सिर्फ दरगाते रहो

0: हाय मैं हूँ आरजे सूज।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।
2: एडिचनार की हॉट फ्रीक्वेंसी पर वायरल ऑन व्हाट्सएप, एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम आप तक पहुंचाते हैं जो भी वायरल होता है। तभी तो कहते यानी लोगों ने भी मानते हैं मानी कि दिल भर जानी, वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आइए बात करते हैं एक स्टार्टअप की जिन्होंने पूरे के पूरा ऑटो साबुत के साबुत ऑटो हिप्पो दिए रंग से और पूरे ऑटोस पर अपनी ब्रांडिंग छाप दी और ब्रांडिंग वाले ऑटो मार्केट में चलने लगे और लोकल्स ने इन पर नजर जो गड़ाई दिनों में बस गया, बोला अरे वाह पूरा का पूरा ब्रांडेड ऑटो घूम रहा है सिटी में, अब कलर कॉम्बिनेशन भी ब्रांड के हिसाब से और ये जो ब्रांड है लोगों के दिलों में जा बसा और लोगों के दिलों में कर गया, क्योंकि पूरे शहर में मारो ऑटो जो घूमियो एक घूमियो एक घूमियो। अब ये टैंक कैंपेन जो है न्यूज बना रहा है, वायरल हो गया और आ गया व्हाट्सएप पर। अब भी अपनी मोहब्बत का मीटर डाउन करके अपनी बात हम तक पहुंचाए 9888-9904 इज द नंबर। मैं हूँ जॉक्स।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन।
4: रेडियो चिनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन शो व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है गिव एवरी डे द चांस टू बिकम द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ योर लाइफ। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन मेरी जान से रहो धड़काते रहो।

0: Dios.
1: और दिल की धड़कन को दरका रहे हैं आप और हम। जी हाँ, मैं हूँ जॉक्स, आप सुन रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप ऑनली ऑन रेडियो चनार। सही है मेरे यार, रेडियो चनार 90.4 FM। और आप जानते हैं व्हाट्सअप शो में एक प्यारा सा टॉपिक जिससे रिलेटेड हम आपसे बतियाते हैं, और आज भी बात करेंगे टॉपिक आप तक पहुंचाने से पहले बता दूं, साइका जुड़ी है हमारे साथ, लिखती है साइका, सर रेडियो चनार पसंद है और पसंद है हमें हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए साइका, गॉड ब्लेस यू। रसिक लिखते हैं, सर आज भी रेडियो चुनार सुन रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम गैप मिला, नीचे चाय ब्रेक पर गया तो रेडियो चुनार सुनने लगा और मज़ा आता है। ऑफिस में एक्चुअली बताया गया है कि कोई भी गैजेट्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होंगे, तो बीच बीच में छूट जाता है, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो रेडियो चुनार सुन ही लेता हूँ। अपने घर वालों से कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्त घर वाले आपके सुन रहे होंगे इस टाइम एंड देखा द मैसेज। थैंक यू सो मच रसिक हमसे जुड़ने के लिए, और चाय के लिए मतलब कभी सनू भी बुला लो। God bless you, thanks once again. और आप भी जुड़े 8999904904 is the number. व्हाट्सअप शो में आज ज्ञान का दान प्रदान होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं ओल्डेस्ट ट्रीज के बारे में। जी हाँ, इंडिया में मौजूद ऐसे पेड़ जो अपने साथ साथ एक इतिहास को बढ़ाते हैं। जी हाँ, जब भी हम पेड़ की ट्रीज की बात करें, पेड़ हो गया, यू नो, हो जाता है, लाइव है तो जबान इधर उधर। खैर, ट्रीज की अगर हम बात करें तो ये जो ट्रीज है अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए हैं। देखने को तो पेड़ है, लेकिन अगर हम सही मायनों में देखें तो पूरा का पूरा इतिहास इनके अंदर छुपा पड़ा रहता है। आप समझ सकते हैं 100 साल, 200 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 300 साल पुराने ट्रीज, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो सदियों से खड़े हैं, चुपचाप देख रहे हैं कि कौन कैसा है और किस तरह से दौर बदलते जा रहे हैं। ओल्डेस्ट ट्रीज इन इंडिया आज के व्हाट्सएप शो का टॉपिक। अगर आप भी जानते हैं आपके अड़ोस पड़ोस में भी, आपके जिले खित्ते में भी ऐसा कोई पेड़ मौजूद है जिसके बारे में पता होना चाहिए सबको,

तो आप भी हमारे साथ शेयर जरूर करें अपने व्यूज, इमोशंस एंड थॉट्स। 9999904904 इज द नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है। मैं हूं जूस रेहक, धड़काते रहो।

0: मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
1: मुझे जी ये वाली मुन्नी चलेगी।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। रेडियो चैनल फ्रेम, आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मजेदार शो व्हाट्सएप शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में अगली पेशकश टिकटॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज। जी हाँ, टिकटॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज, जहाँ पर हम आप तक बॉलीवुड की तरक्की परखती खबरों के साथ साथ टेक अपडेट्स भी पहुँचाते हैं। हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन सरिया धड़काते रहो।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती है। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM।

Ready to 90.4 FM show. What's up show ka segment Tech Talks mein aaiye aapko batate hain ki agar aap bhi iOS devices ka istemal karte hain, iPhones ka istemal karte hain, then you gotta be happy about this because ढेर सारे fixes ke saath aa chuka hai 26.5 RC. जी हाँ, पब्लिक अपडेट से पहले आरसी का आना लाजमी है. और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रेडियो चुनाव 90.4 एफएम इस रिकमेंडेड दैट अगर आप चाहें तो आरसी का जो अपडेट से रिलेटेड हाइलाइट्स है उन्हें चेक कर सकते हैं. और एप्पल ने इसका स्टेटमेंट भी जारी किया दैट व्हाट इट विल बी होल्डिंग. चेंजेस के साथ साथ बग फिक्सेस और साथ ही ढेरों नए वॉलपेपर्स इस अपडेट का हिस्सा है. बताया जाता है कि ये अपडेट जो है फिक्स करेगा बैटरी से रिलेटेड इश्यूज भी. और एप्पल ने iOS डिवाइस के लिए कुछ बेहतर जरूर किया है. रेडियो चना 90.4 FM हर दिल की धड़कन से धड़काते रहो.

0: Zeus. कौन आया?
1: So my dear ready channel fam, it's my time to sign off for the day. जी हाँ, जक्सेस. और आज के लिए बस इतना ही, और मुलाकात अगली जो है वो होगी कल. जी हाँ, कल आपसे मुलाकात होगी और मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आपसे जुड़ने वाली है आरजे दीवाल. शो का नाम चिना बीट्स. You'll be enjoying beats on repeat only on the hottest frequency. Until we meet again, keep your heads high, walk tall, and always remember that I love you all. Bye bye, tata, take care, kushbash, ma salama.

0: कश्मीर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक खूबसूरत एहसास है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। यह है कश्मीर, यह है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहां की शायरी को महसूस करना होगा। यहां की शायरी में इबादत का है। यहां की आवाज शायरों के कलम से।
1: अरे ये सब हटा रे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दी
2: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

देखिए जुम्मे की रात है पर बातें तो बढ़ेंगे, आपका साथ है, हम हैं, आप हैं और क्या ही चाहिए। 90.4 रेडियो चनार ब्रागा सो चुका है शो चनार बीस का विद फुल ऑन वाइब एंड ट्राई बीट्स ऑन रिपीट, ये सारी बातें यानी कि बहुत कुछ आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड मेरे दोस्त।

0: बीट्स ऑन रिपीट शो चुनाव बीट्स, ये सारी बात है मस्ती मजाक फन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट के अलावा ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। वेला तो सुपर एक्साइटेड हमेशा की तरह कि आज भी बहुत कुछ बातें करनी है। और आई नो कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और जाना कहाँ है, मैं हूँ ना, मैं तो सुनने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप अपनी बातें हम तक पहुँचाते। और हम अक्सर ये कहा करते हैं कि बातों से जज्बात बढ़ते हैं, बातों से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है एक दूसरे के बारे में। मैं बताती हूँ आपको कि इन बातों से ना मेरा हर एक दिन बहुत खूबसूरत चलता है। तो आप भी बताइए कि आपको कितना अच्छा लगता है साथ जिस पे हर चीज़ है, यानी कि बात है, जज्बात है, ख्यालात है, एहसासात है। और भी मैं कहना चाहती हूँ पर थोड़े से ब्रेक तो लेना पड़ेगा ना, यानी कि आप जुड़ेंगे तभी तो ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी हम आप तक पहुँचाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। सो मैं एक्साइटेड हमेशा की तरह, और आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं, सुना के मज़ेदार सा कोई किस्सा हिस्सा बन के, और बता सकते हैं क्या है आपके हालात, जज्बात और ख्याल। जी हाँ, स्लोली स्लोली आप इस शो का हिस्सा बन जाइए क्योंकि शुरुआत ही हुई है बेटा।
1: कोई टेंशन नहीं जे साडे नालो, हेलो जी सुन लो मेरी बात करे जो तेरी बात
0: सुनूं। जी हाँ, हेलो जी, मेरी बात तो आप सुनेंगे लेकिन मैं भी आपकी बातें सुनूंगी। यानी ये जो कॉन्वर्सेशन है ये एक तरफा नहीं दो तरफा होती है, और बहुत सारी बातें हम करेंगे और पहुँचाएंगे वहाँ वहाँ तक आपकी आवाज़, जहाँ जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनाव की आवाज़। एंजॉय कीजिए बैक टू बैक सॉन्ग्स, आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM। ये दल की धड़का

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

बीच सुन रुपीत शो चुनाव बीच ढेर सारी बातें और हम आप तक पहुंचा रहे हैं ट्रैफिक अपडेट। नेशनल हाईवे अब जम्मू एंड कश्मीर की जहाँ पर बात आती है, बहुत साइड से ट्रैफिक अलो किया जा रहा है। आप आराम से आ सकते जा सकते जम्मू टू श्रीनगर, श्रीनगर टू जम्मू, बट स्लो मूवमेंट भी ऑब्जर्व किया गया बिकॉज बहुत सारी जगहों पर अभी मेंटेनेंस चल रही है लैंडस्लाइड्स की।

वजह से कई कई जगहों पे जो रोड है वो ख़राब हो गया था, अभी उस पे मेंटेनेंस जारी है। और बट आपको थोड़ा कॉशियस रहना है बिकॉज हमारे कंधों पे एक जिम्मेदारी होती है, उसे हमें निभाना पड़ता है और हमें सही तरीके से गाड़ी चलाना, कॉशियस रहना, क्योंकि रोड ही वैसा है और हमें जो गाइडलाइंस दी गई है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। एंड आपको बता दें कि आपका जो सफ़र है वो बहुत ही खूबसूरत जा सकता है जिस हमने कुछ सही चीज़ों को अपना के हम एक पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं सोसाइटी में। और उसके अलावा सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारी है। और गलत जगह पे ओवरटेक करेंगे तो फिर वही है कि उसमें तो भाई या बाबा गड़बड़ हो जाएगा, तो गड़बड़ नहीं करना है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नो नो नो, ऐसा तो नहीं हम होने देंगे। क्योंकि हम जब कहते हैं कि हम रेडियो चुनार आपके तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, वी केयर फॉर यू, हम एक्चुअली उसे निभाते भी हैं, यानी वी मीन इट, वी केयर फॉर यू। और हमें हर चीज़ का ख्याल है और हम आपको अवेयर करते हैं कि ये चीज़ें ना करें क्योंकि इससे फिर आपका ही नुकसान है, फ़ाइन भरना पड़ेगा। सो ये चीज़ें नहीं करने का, अपना ख्याल रखने का, इन्जॉय करने का। यहाँ पर बैक टू बैक सॉन्ग्स ऑन योर रेडियो चुनाव 90.4। बिल्कुल आप सही चलेंगे तो सारी गाड़ियाँ आपको फॉलो करेंगे। देखिए क्या मस्त तरीके से गाड़ी चला रहे हैं और इनसे सीखे कोई, इनसे सीखे गाड़ी चलाना, ऐसा ही होता है, पॉजिटिव मैसेज यही होते हैं। फिलहाल इन्जॉय कीजिए इस ट्रैक को। आप भी कुछ कहना चाहते हैं 8999-0494 कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो कैसे बन जाएगी।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Jeremy. Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हाजिर हूँ और मैंने बोलते थे खबर में स्टंट सॉन्ग की अच्छी खबर ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुँचते हैं और हम ब्रेकिंग न्यूज़ में हमेशा कुछ ना कुछ जो भी चला होता है यानी कि जो भी ट्रेंडिंग होता है उस पर बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अभी के लिए स्प्लिट्स वाला का क्रेज़ तो काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत कम समय रह गया, सेमीफिनाले होने जा रहा है, फिनाले भी आ रहा है और ये बताया जा रहा है कि अभी जो सेलिब्रिटीज़ है, सेलिब्रिटीज़ की जब बात आती है तो हम देखें तो आकांक्षा चौधरी की जो अगर हम उनका फैंडम देखें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार दे रहे लोग, लेकिन

0: साथ में अगर हम देखें कि सेलिब्रिटीज भी उन्हें काफी पसंद करने लगे, यानी कि अभी मूवी आ रही है कि है जवानी तो इश्क होना है, अब ऐसा लग रहा है कि कंच कंच कंच जी हाँ कंचा से इश्क हो रहा है लोगों को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फेम मिलने के बाद अगर हम देखें तो अगर सेलिब्रिटीज भी लाइक कर रहे हैं उनकी चीज़ों को, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ दम तो है। और मूवी का सॉन्ग आया वाव, और वाव पे तो बहुत सारों ने रील बनाई है, लेकिन आकांक्षा चौधरी की रील पे वरुण धवन ने लाइक किया है, और इस पे चर्चा हो रही है, हर कोई बात कर रहा है कि देखिए देखिए कि इनसे सीखिए कि ऐसा हो फैंडम तो लाइफ में और क्या ही चाहिए, इतना ही प्यार तो चाहिए हमें।
1: आज की ताजा न्यूज़ में हम छोटी-छोटी
0: वैसे आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई, कॉन्ट्रोवर्सी हुई, फेक पीआर एंड ऑल दैट, बट आपको क्या लगता है सही क्या है, और क्या इतना प्यार मिलना सही है जहां पर 10,000 फॉलोअर से अभी वो 2.5 मिलियन फॉलोअर तक पहुंच चुकी है, यानी कि आपके हिसाब से रियल है या फेक बता सकते हैं आप, आपका ओपिनियन मैटर करता है। 8899-04904 टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो का हिस्सा बन जाइए, मैं हूं दीपा, सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 91.4 FM।

मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 एफएम।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM पर।

Cinap.

शो चुनार बीट स्टेट सारी बातें आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ ऑन योर रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेंड वर्सेस यस यस यस टैलेंट. क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ट्रेंड के सामने टैलेंट दब जाता है. बट सही मायनों में समझे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कदरदान होते हैं और जो टैलेंट की कदर को समझते हैं और टैलेंट को समझ पाते हैं एंड दे अंडरस्टैंड कि टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जो किसी से छीनी नहीं जा सकती. हाँ, भले ही कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से कभी कभार टैलेंट जो है हमारा छुप जाता है, दब जाता है, बट स्टिल एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे टैलेंट से हम वो चीज़ पा लेते हैं. कहीं ना कहीं हमें वो टैलेंट हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है. आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और बता सकते हैं कि टैलेंट की कदर आज आपको लगता है कितनी ज़्यादा है या ट्रेंड की वजह से वो कहीं ना कहीं दब तो नहीं गई है. आप बता सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं 8899-04904 पर. आप कॉल, टेक्स्ट, व्हाट्सएप मैसेज करके आप शो में शामिल हो सकते हैं और बन सकते हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो चैनल 90.4 FM का हिस्सा, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है।

0: बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

वक्त चुराने के लिए धुन की ज़रूरत थोड़ी है। अब धुन कब बदल जाए, धुन कब आवाज़ दे कि आप बस यहाँ से जाने वाले। बट मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि आप अपने पसंद की धुन सुन सकते हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आप शो म्यूज़िक ऑन डिमांड भी अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो जल्दी से 8899904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूज़िक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाए, क्योंकि चिनार बीत को टाटा बाय बाय किया है हमने और वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन म्यूज़िक ऑन डिमांड आप 2 बजे तक सुनेंगे। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, 8899904904 टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूज़िक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाए।

꽃처럼 शो म्यूजिक ऑन डिमांड अब एंजॉय कर रहे हैं ऑनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम और यहाँ पर हमें की रिक्वेस्ट आई इस ट्रैक के लिए इश्क में आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं 8999-0494 पर कॉल करके रेक्स व्हाट्सएप करके शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन सकते हैं। फिर से बता रही हूँ, आप अपनी फेवरेट ट्रैक्स की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं 8999-0494 पर टेक्स व्हाट्सएप कीजिए, शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

रुबीना की रिक्वेस्ट है ये इस ट्रैक के लिए सैयारा मूवी से. आप भी अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं. थैंक यू रुबीना हमसे जुड़ने के लिए. और ये आधा घंटा आप सभी का है, यानी कि आप अपने फेवरेट ट्रैक्स अपनी फेवरेट धुन सुन सकते हैं ओनली ऑन हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 90.4 FM अपने 8899049094 पर.

जी हाँ, हमदम, हम सफ़र, हमराई, अरे कुछ भी कह लीजिए, पर प्यार तो है और ये प्यार बढ़ता है, बेशुमार होता है जब आप शो पे मेरा साथ देते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है 12 से 2 बजे तक यहाँ पर आपसे ढेर सारी बातें करना, यानी कि ये सफ़र लगता है ना काफ़ी छोटा है, लेकिन इस सफ़र में इतनी मिठास भरी है, इतनी सारी बातें आपकी मेरी, जो दूरी रहती है कुछ टाइम की, लेकिन मैं पूरा करने आती हूँ बराबर कल 12 बजे। जी हाँ, अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, असरा जुड़ेगी आपसे बराबर 2 बजे शो हंगामा लेकर, फुल ऑन ड्रामा, मस्ती, यानी कि एक जाता है दूसरा आता है और ये कारमा बस यूँ ही चलता रहता है। फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ और डिसाइड नहीं, खुशी है कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते शो के बाद भी, मैं आपको सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिलूँगी। आप रेडियो चुनाव 91.4 FM लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे ढूंढ सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं हमारे लेटेस्ट और

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

सारी मौजा ही मौजा है और साथ में ड्रामा और हंगामा भी हो तो आए मजा आ जाए। शाम सवेरे का तो पता नहीं बट आफ्टरनून में हंगामा होता है जहाँ एंटरटेनमेंट करंट अफेयर्स लाइफ का ऐसा देखिए हम भी फंबल कर रहे हैं और इतनी जल्दी है आप तक ये शो पहुंचाने की कि देखिए क्या करें हम। शो शुरू हो चुका है जहाँ एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर्स और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच मिलता है जो कहीं और नहीं होता और आते आते ही कुछ प्ले होता है जो कि होता है क्रेजी।

यार टेंशन की तो बात नहीं है. एंड दिस इज सच अ फैसिनेटिंग थिंग कि आज थर्सडे है. एंड व्हाट इज फैसिनेटिंग अबाउट अ कॉमन थर्सडे इज कि वी आर लिटिल मोर क्लोजर टू वीकेंड. और अगर मे की बात करें, मे में हम ईद भी देखेंगे और काफ़ी एक्साइटेड है. अभी से ही मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. और वैसे भी आज जो भी ट्रेंडिंग है उसमें मेट गाला है, उसके बारे में तो बात होगी पर कुछ ही ट्रैक्स के बाद. तो मेट गाला है और मुस्लिम मेट गाला यानी ईद का क्या सीन है और लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में भी बात होगी. अभी अभी शो शुरू हुआ है, अभी बहुत सी बातें हैं. एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू गैदर एवरीथिंग कि क्या क्या बोलना है आपको, क्या क्या शेयर करना है आज. और आप भी बताइए, आप भी जुड़ जाइए. 8899-94-94 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप पर बन सकते हैं इस हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी का हिस्सा. मैं हूँ अश्रा, शो है हंगामा. मैं बस यूं कही और यूं वापस आई.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। ये है हर दिल की धड़कन। जी हाँ, हंगामा ड्रामा तो है ही, पर इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। और अभी वक्त है ट्रेंडिंग रील्स और मीम्स के बारे में बात करने का कि क्या सोशल मीडिया पर चल रहा है, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स है, यूट्यूब है, क्या लोग देख रहे हैं, रीपोस्ट हो रहा है और किसके बारे में हो रही है चर्चा। और जैसा कि पहले ही मैंने हिंट दे दिया था, वी आर टॉकिंग अबाउट मेट गाला 2026 टुडे। और कल भी हमने आउटफिट्स के बारे में बात की, बिकॉज थीम इस बार का फैशन इज आर्ट है। तो आई बिलीव एवरीथिंग इज आर्ट, बट कहीं ना कहीं अगर इस बारे में बात करेंगे मेट गाला का, जो 2026 के जो आउटफिट्स हैं, लोग रिव्यू दे रहे हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दे रहे हैं कि ये सही है भाई, ये सही नहीं है, इसकी सिलुएट अच्छी है, उसकी नहीं है। सो बट अगर हम बात करें बेसिकली जो मेन बड़े पर्दे पे दिखता है, दैट इज़ अ सेलिब्रिटी, दैट इज़ समबडी हु वेयर्स द आउटफिट। बट उन लोगों के बारे में भी बात होनी चाहिए जो एक्चुअली डिज़ाइनर्स होते हैं। और अगर इंडियन डिज़ाइंस की बात करें, गौरव गुप्ता और मनीष मल्होत्रा हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। और गौरव गुप्ता इज नोन फॉर हिज वेरी क्रिएटिव साड़ीज, और मनीष मल्होत्रा ने बहुत ही ब्यूटिफुली करण जौहर का जो वो गाउन था, वो एक केप था, वो बनाया था। और अगर हम मनीष मल्होत्रा की बात करें उनकी इस पॉइंट पे, क्योंकि मेट गाला में उनके आउटफिट्स दिखे, वो भी रेड कारपेट पे दिखे, बट अभी उनकी एक बहुत पुरानी एक कहानी सामने आ रही है कि कैसे मरजानी सॉन्ग, जो एक्चुअली बिल्लू मूवी से है, शाहरुख खान करीना कपूर उस मूवी में है, उन्होंने वो सारे आउटफिट्स जो भी करीना ने उस गाने में लाइक लगाए हैं, यूज़ किए हैं, वो सब हैंड क्राफ्टेड है और एक एक करके पर्सनलाइज्ड वे में मनीष मल्होत्रा ने बनाया था। एंड दैट इज सच अ बिग पार्ट ऑफ बॉलीवुड। इस सॉन्ग में जितने भी आउटफिट्स हैं, दे आर हैंड क्राफ्टेड एंड पर्सनलाइज्ड बाय मनीष मल्होत्रा। लाइक सी द जील, सी द डेडिकेशन एंड सी द आर्ट, एंड डेफिनेटली फैशन इज आर्ट। और इसके अलावा अगर बात करें, जो भी आउटफिट इसमें यूज़ हुए हैं, कहीं ना कहीं बाकी म्यूजिक वीडियोज में भी ये सारे आउटफिट्स देखे गए हैं। आप ही बताइए आपका इस बारे में क्या ख्याल है। 9909904904 इस नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप पर बन सकते हैं इस हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी का हिस्सा। मैं हूं अस्ट्रा, शो है हंगामा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है।

Chinar Beats ve Darce Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दी।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

देखिए महबूब अगर तड़प रहा है उसका हम तो कुछ नहीं कर सकते, बट अगर आप अपने विचार हम तक भेजेंगे तो जरूरी है कि आपके विचार सब तक पहुंचेंगे। एंड मोर ओवर, जैसे कि आज हम अपकमिंग बॉलीवुड मूवीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि 2026 में आने वाले टाइम में कौन कौन सी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं या फ्रेशली रिलीज्ड हैं, तो आप भी बताइए कि अभी तक जितने मूवीज़ के बारे में हमने बात की कि आपकी कौन सी फेवरेट है या हु व्हाट आर यू एंटिसिपेटिंग कि कौन सी मूवी अब आपको देखनी है ज़रूर। जल्दी से हम तक अपने विचार भेजिए। 8899904904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। मैं हूं अश्रा, शो हंगामा में बस यूं गई और यूं वापस आई।

Jeremy. Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम। जैसा कि हमारा एक वादा रहता है, देखिए 4 बजे वाले हैं और आपका और मेरा साथ यहीं तक था। एंड मोर ओवर बस यही बात है कि कल फ्राइडे है, बस फ्राइडे आफ्टरनून हमेशा खुशी होती है क्योंकि वीकेंड और ज़्यादा नज़दीक आता है। मैं मज़रा आज के लिए बस इतना ही। दिस वॉज ऑल अबाउट मी, दिस वॉज ऑल अबाउट शो हंगामा। और जाते जाते बस यही मैसेज कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए और सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 एफएम। मैं हूँ अस्ट्रा शोथ हंगामा। आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट।

Chinar Beats ve Darce Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम, रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब। शम्मा हूँ नई नई, जलूंगी सारी रात।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें

0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

शांति, तुमने तुमने सही किया, अपनी खुशी चुन ली, और ये मत सोचना कि मेरा दिल टूट गया ना। मैं खुश हूं, मैं खुश क्योंकि क्योंकि तुम खुश हो। लेकिन वो मेरा साहब से जरूर कह देना कि इस बार मैंने उन्हें छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारी खातिर। हाँ,

से जन्म में उनका मुझसे फिर फर्क पड़ गया था। तो आप मुनि आधार या नाराज कला माइंडेड बहुत तो नहीं हो रही है।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।
2: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
3: आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो टनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।
2: आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूं, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहां तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
2: सा सा रे ग म प म ग म प

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: थोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय। मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया।

0: ये साहब माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुक्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, टारा जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

ने खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया बाजू।

0: ना यूं ही साथी
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: डाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: hey! जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: है।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।